कटहो निज बेरी परचार इस बेरी हुआ पाव सुफल बिन बेरी कर पार इस बेरी हुआ पाव सुफल

0: जाए विच सभा सत्कारिया खिन खिन।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
3: वाहिगुरु जी।
4: जुगो जुग अटल दीन दुनी दे मालिक शाह दे शहनशाह और रबी तलीम दे महासागर साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन पवित्र चरणा विच रोजाना दी तरह समय चो समा कढ के यात्रा करके सतसंगियां दे रूप विच जुड़ के बैठे सतकारयोग खालसा जीओ वड्डियां भागां वाले हो गुरदेव पातशाह महाराज जी दे दर्शन दार करके आए हुए विद्वाना पासों अपने वड वडेरियां दियां कथा कहानियां सरवण करके अपने भागां नूं सफला कर रहे हो। आओ गलबात दा सिलसिला आरंभ करन तों पहलां सतगुरां दी बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाईए। ओ फतेह जिहदे विच निरंकार पिता अकाल पुरख वाहिगुरू जी दा दो वारी नाम आउंदा है, जिस नूं बुलाउण नाल रसना पवित्र हुंदी है और आत्मा नूं सुकून मिलदा है। और करो कृपा गुरदेव पातशाह महाराज जी की खुशी प्राप्त करो ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने साढ़े तो पहला गुरु घर के मुख सेवादार भाई भुपिंदर सिंह जी उन्होंने पंजाब की धरती तो आए हुए निहंग सिंह जथेबंदी हरिया वेलों वाले महापुरख बाबा निहाल सिंह जी उन्हां दे जथेदार बाबा नागर सिंह जी जो कनेडा की यात्रा ते ने वह अपने सिंघां समेत गुरु के दरबार विच दर्शन दार करन वास्ते आए, गुरु की संगत दे दर्शन करन वास्ते आए। भाई साहब जी ने उन्हां नूं जिथे जी आया आख्या उत्थे गुरु घर की बख्श सरो पाओ दे के उन्हां दा माण कीता, क्योंकि ये साडे गुरु घर का एक रिवाज है, इंज कह लो एक मर्यादा है। कोई भी महापुरख जदों गुरु के दरबार विच आउंदा है तां उस नूं गुरु घर की मर्यादा मुताबिक सत्कार दिता जांदा है। और ये जथेबंदी जिन्नियां भी निहंग सिंह जथेबंदियां है पंजाब की धरती ते उन्हां विचों एक प्रमुख जथेबंदी है, बड़े वड्डे उन्हां दे कारज ने, बड़े वड्डे स्थानां दीआं इन्हां कोल सेवावां ने। बाबा नागर सिंह जी बड़े उद्यमी ने, जदों किसानी मोर्चा लगा सी आपां उत्थे वेख्या भी किस तरह मोहरे होके डट के पंजाबियों की सेवा की है। बाबा निहाल सिंह जी भावें इस वक्त तो वडेरी आरजू दे ने, पर उन्होंने भर जवानी विच गुरद्वारा पौंटा साहब जी नूं आजाद करवाउंदिआं जिथे कुछ सिंघां दीआं शहादतां होईआं उत्थे बाबा निहाल सिंह जी दीआं वी गोलियां लगियां। अज भी दसदे आ वी इक गोली दा शर्रा जिहड़ा उन्हां दे शरीर अंदर है, और वड्डी जथेबंदी है उन्हां दा माण सत्कार कीता गिआ। होर भी गुरमुख प्यारे नाल आए सभनां दा धन्नवाद, क्योंकि ये निहंग सिंह साडे खालसा पंथ दे ओह सिपाही ने जिन्हां कोल सतगुरां दी बख्शिश कीती हुई बाणी भी है और बाणा भी है, शस्त्र भी उन्हां संभाल के रखे हुए है। साडे बच्चियां वास्ते ये जिउंदी जागदी तस्वीर ने भी अपने पुरातन सिंह जिहड़े ओह इस तरां दे हुंदे सी, हर वेले तैयार बर तैयार रहना। वक्त दी हुकूमत ने घर खोले, पिंड खोले और छड के सब कुछ जंगलों में जा विचरे, पर फिर भी निहंग सिंह अपने को एक खजाना रखते होंगे सी। उस खजाने विच गुरु की बाणी का गुटका, जो अमृत वेला होना जे नेड़े खूह है तो उतों इनान कर लेना, जे दरिया वगदा है उतों इनान करके तो जिथे भी समा मिलना उत्थे अमृत वेले बैठ के बाणी पढ़नी। भावें घर काट जमीन जायदाद सरकार ने खोली, पर एक गुरु की बाणी का गुटका निहंग सिंह ने नहीं किसी को दिता, इन्हू हमेशा अपने को संभाल के रखते रहे, क्योंकि बाणी गुरु की सिख की आत्मा है, ये तो सानू शक्ति प्राप्त होंगी। हरनामदास सहराई ने बड़ा सुंदर लिखा, वो कहिंदा निहंग सिंह इस धरती के उत्ते एक मां शक्ति है जिहड़ी हर वेले मजलूम की राखी वास्ते तत्पर रहिंदी है। कहिंदा निहंग सिंह का एक हथ घोड़े की वाग नूं हुंदा ते दूजा तलवार की मुठ नूं हुंदा। रण मैदान विच दुश्मन का पहला वार निहंग सिंह खांदा है। भावें कहिंदा निहंगां दी दुनिया कोई नहीं हुंदी, पर सारी दुनिया निहंगां दी हुंदी। वेखण नूं जिन्ने ये बाहरों शस्त्रधारी दलेर और नेड़े बैठो तो उन्ने ही ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਤਨ ਤਵਾਰੀਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਅਖਾਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਸੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਿਹੰਗ, ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਨਿਸ਼ੰਗ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਖਲਸ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਫਰਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਕਾਲ ਦਾ ਤਖਲਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਕਾਲ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਲਾਲ ਨੇ। ਤੋ ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ

बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण बिजाता रहाउ नानक प्रभु अविनाशी ताकि सेवना बिरती जासी आनंद करे तेरे दासा जब पूर्ण होई आसा बिलावल महला पंजवा ताती वावन लगई पारम शरणाई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा भेटिया जन बंत बनाई राम नाम मुख दिया एका लिवलाई रहाउ राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई कव नानक कृपा पई प्रभु सहाई श्लोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना होना तू न छुट निकट न जाइ दो श्लोक महला पंजवा मन में चित्त चित्त बनी उद्यम करोट नीत हर कीर्तन

ही स्वभाव है। दूजी दफा धोखा खाना मूर्खता है और तीसरी दफा भी उसे तो उसे तरह का धोखा खा लेना कहने में पशु पाना है। ये तो पशुता है, मनुखता खत्म हो गई, मनुखता रही नहीं। अंधी रही है तो ज्ञान वे होनी, बूम आलम में शब्द पर जल इंज होवे जैसे उल्लू हनेरे दे कख ना समझ। इस शब्द का प्रयोग गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी किया, संपद दौल झोल संग झोलत माया मगन फिरत घुगना। पंजाबी दे उल्लू नु घुगू कहते हैं, इंज घूमे जैसे उल्लू हनेरे कख नहीं समझ, कुछ भी नहीं पता सच्चाई की है, असलियत की है, हकीकत की है। जाग जाहिद खर्शनासी बूम आलम में शब्द। तीसरी पंक्ति, दुस दे मुहाफिज बदबही खा शैतान नाजम में शब्द। दुस्द कहने ने चोर नो, मुहाफिज रखवाला कौन होवे, चोर, चोर रखवाले अमन। ते इंतजामी ढांचा किस दे कोल होवे, शैतान दे कोलो, नाजम ओ होवे। इंतजाम करने वाला कौन होवे, शहर दा, शैतान। रखवाली करने वाला कौन होवे, चोर। धार्मिक बंदे कैसे होवन, खोते। हुक्मरान कैसा होवे, बगयाड़। वजीर कैसे होवन, कुत्ते। और दीवान कैसे होवन, चूहे। तो आम प्रजा कैसी होवे, उल्लू। मैं फिर अर्ज करा, बगयाड़ कौन बन जाता है, असंतुष्ट। असंतुष्ट मनुख किसे नु खाएगा, किसी की जान खाएगा, किसी की इज्जत खाएगा, किसी की धन संपदा खाएगा। और असंतुष्ट मनुख दे कोल जे किधरे ताकत आ जाए, उते लाशां बिछा देगा। 1 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर। चंगेज खान जिथो लंघदा सी बस्तियां उजाड़ के लंघदा सी, हलाकू खान दे घोड़े लाशां तो लंघदे सन। कहिंदे ने कमजोर बंदा अपनी वाशना दी पूर्ति लई रब नू मनदा है, गुरु नू मनदा है, परमात्मा नू मनदा है, क्योंकि जिहड़ी उसकी कामना है वह गुरु तो बिना पूरी हो नहीं सकती। कमजोर बंदा अपनी कामना दी पूर्ति लई परमात्मा नू मनदा है, गुरु नू मनदा है। ताकतवर बंदा अपनी कामना दी पूर्ति लई परमात्मा नू इनकार कर देंदा, एक पासे रख देंदा है। गल दोहां दी कामना दी है, कर्म भी नहीं है। ताकतवर बंदा अगर सामने रब नू रखे परमात्मा नू, क्या 1 करोड़ बंदियां नू कतल कर सकता है, क्या सड़कां ते हजारां लाशां बिछा सकता है। कहिंदे ने ताकतवर बंदे नू परमात्मा नू एक पासे करना पैंदा, उहदी कामना पूरी नहीं हो सकती अगर रब नू अगे करे, क्योंकि रब ते दया है, परमात्मा ते प्रेम है, परमात्मा ते निर्वैर है, परमात्मा ते निर्भय है, परमात्मा ते साबर है, परमात्मा ते समान दृष्ट है, परमात्मा ते विशाल है। अगर ये परमात्मा नु अगे करे तो क्या करोड़ा लाशां बिछा सकता है, क्या घरां नु उजाड़ सकेगा, क्या किसी की असमत इज्जत आबरू धन संपदा जान खो सकेगा। कहिंदे ने ताकतवर मनुख हमेशा अपनी वाशना दी पूर्ति लई परमात्मा नू इनकार कर देंदा है, एक पासे कर देंदा है, क्योंकि उन्हों सामने रखे ते अपनी वाशना दी पूर्ति हो नहीं सकती। कमजोर बंदा अपनी वाशना दी पूर्ति लई परमात्मा नू अगे करदा, उहदे कोल कोई सहारा ही नहीं और कोई आसरा ही नहीं। यह परमात्मा तू ही मेरी टेक है, तू मेरी कामना की पूर्ति कर। वह भी कामना करके रब नू मनदा है, ते ताकतवर भी कामना करके इनकार करदा है। सियाणे इस नू समझणगे, पकड़नगे, मूल गल कामना दी है, रब दी नहीं है। जिन्हों असी धार्मिक दुनिया कहने हैं वह भी धार्मिक दुनिया नहीं है। यह भी मैं अर्ज कर दें, अधार्मिक दुनिया ते अधार्मिक है, धार्मिक दुनिया भी अधार्मिक। एक बड़ी कीमती पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी, और मैं समझना इको एक वाहिद ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने जो ऐसा कह सकते ने, पाप पुन दोए एक समान, निज गुण पारस तजो गुण आन। पाप ते पाप है, पुन भी पाप है, हद हो गई, पुन भी पाप है तो क्यों करिए, की लोड़ है फिर। ये पंक्ति मैं थानू गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी सुना रहे हैं, पाप पुन दोए एक समान।

0: निज गुण पारस तजो गुण आन। पहले लभना पेगा कि मनुख पाप क्यों करता है। पाप करता है लोभ वस होके, हंकार वस होके, अज्ञान वस होके, वासना वस होके मनुख पाप करता है। ते मनुख पुण्य करे हंकार वस होके, मनुख पुण्य करे लोभ वस होके, मनुख पुण्य करे वासना वस होके, और मनुख पुण्य करे होमे करके। तो सतगुरु की बाणी कह दिए फिर पाप पुन विच फर्क की होया? दोवां दे थल्ले बुनियाद ते कोई है। अज्ञान करके पाप कीता, अज्ञान करके पुन पिया करता है। हंकार करके पाप कीते इसने, हंकार करके पुन पिया करता है। वासना करके इसने पाप कीते ने, ते वासना कामना करके पुन पिया करता है। फर्क की है? पाप पुन दोए एक समान। पापियां दे पाप ते पाप है गे ने, गुस्ताखी माफ पुनीत बंदियां दे पुन भी कोई पुन नहीं ने। क्योंकि थल्ले हंकार खड़ा है। तीर्थ बरतर दान कर मन में धरे गुमान, नानक नेह फल जात ते जिम कुंचल इसनान। तो मैं करा असंतुष्ट मनुख कातल बन जाता है, दुराचारी बन जाता है, डकैत बन जाता है। संसार दे इतिहास दे ये भरे पे ने, इन्हों का जिक्र है। और संतुष्ट मनुख भगत बन जाता है, सूरबीर बन जाता है, दानी बन जाता है। जगत दे सारे का सारा इतिहास ये दो तरह के मनुखां दे आले दुआले घूमदा है। खोण वाले, देण वाले, सत्संग, गुरु की संगत, भजन कीर्तन, नाम अभ्यास, बाणी का पाठ मनुख नूं संतुष्ट करता है, भगत बना देता है, सूरबीर बना देता है, दानी बना देता है, संपन्न बना देता है, महान बना देता है, और उसके अंदर परम आनंद पैदा करता है। भगत एक खिड़ा होया फुल है, वो अपना स्वपन बनता है, अपने गुणा की महक जो है बनता है। इस तरह सत्संगी ये रब्बी दौलत सत्संग तो प्राप्त करता है। इतने ही बचने सुगत प्रवान करने, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन। असी नाम अभ्यास करते हैं, वाहेगुरु मंत्र का जाप करदे करदे गुरु तो वह सौगात प्राप्त करी जिन्हों कहने संतुष्टि, संतोख। और जैसे मन संतुष्ट होगा अंदर परम आनंद की वर्षा होगी, तो मन दे भार नहीं रहेगा, बोझ नहीं रहेगा। साहब रहमत करन, बख्शिश करन, ये दैवी गुण सानू प्राप्त होवन। इतने ही वचन इस सबूत प्रवान करने, क्योंकि दासा ने वापस भी नोटिंगम जो है जाना है, तो घंटा उत्थे हाजिरी भर के फिर थोड़े तक जो है पहुँचे हैं। इतनी सेवा प्रवान करनी। इस वक्त तक आप बैठे रहो, सुनन दा शौक मुख रखे तो थोड़े शौक तो सदके कुरबान साहब ये थोड़ा शौक बनाई रखे, प्यार जो है बनाई रखे। बार बार सारे दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। फुल चुग दी शमा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलता, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई ता दुखी है। जे औलाद है ता हुकम विच नहीं है वो ता दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: पूरे गुर का सुन उपदेश
1: वाह ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सा सिमर हो गोबिंद
1: मन तरकी उतरे चिंद
0: आस अनित त्याग हो त्रंग
1: संत जना के तुर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहो
1: साथ संग अग्न सागर तरहो
0: हर धन के भर ले हो भंडार
1: नानक गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: साथ संग पर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चितव हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का एह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमलीक लाल एह रतन
0: सुनत कमाप्त हो उदहार
1: आप त्रैलोक कै निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजे
1: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजे
0: प्रगटे गोपाल महांत कै माथे
1: नानक उदरे तिनकै साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभ आप मिलाए
0: मिट गए बैर भय सब रीन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेव
0: काल जंजाल विकार के रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभ धारी
1: नानक नवहि खेप हमारी
0: प्रभु की उस्तत करो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुख मनि सहज गोबिंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सहोत निधान
0: सब इच्छा तां की पूर्ण होए
1: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब से ऊच पाए स्थान
1: और न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निध
1: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश
1: सबके मत सकल थे उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टेता
0: ए फल तिस जन कै मुख भनी
1: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
0: एहो निधान जपै मन कोई
1: सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
1: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
0: सकल मतांत केवल हर नाम
1: गोबिंद भगत कै मन विश्राम
0: ओट अपराध साध संग मिटै
1: संत कृपा ते जमते छुटे
0: जाके मस्तक कर्म प्रभ आए
1: साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुने लाए प्रीत
1: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
0: जन्म मरणता का दुख निवार
1: दुर्लभ दे तत्काल उधार
0: निर्मल शोभा अमृत ता की बानी
1: एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिन से भय भरम
1: साध नाम निर्मलता के कर्म
0: सत्य ऊच ता की शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम।

चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी छंद न सतरा न मित्रा न परम न पितरा न कर्म न काया जन्म अजाय न चित्र न मित्र परे पवित्र परथी से आदि से अदर से अकर से भगवती छंत है प्रसाद कथते क्या छे जो देसा क्या भिज पेसा क्या गंज करम क्या भंज भरम क्या भिज लोक क्या दित सोक क्या बधूत बरन क्या बहभूत करण क्या राजंग प्रभा है क्या धर्म तुझा है क्या सोक बरन क्या अशोक बरन क्या सर्वा भरन क्या जगतंग कृति है क्या छत्रंग छत्री है क्या ब्रह्म

भूते परमाथम परमाथे सदा सर्वसाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी तरपंगी अनंगी अनामे त्रिपंगी तरकामे निरपंगी स्वरूपे सर्व

तो पसा है, के आत्मंग प्रभा है, के अचलंग अन्नांग है, के अमित तो अपंग है, मद भार संत है प्रसाद। मन मन प्रणाम गुण गण मोदाम अर बर अगन जहर नर पर पंज अन गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर खंड बर नर अमंड अन पवनास मन मर प्रकाश गुण

नमः सूर्य सूर्य नमः चंद्र चंद्र नमः राज राज नमः इंद्र इंद्र नमः अंधकार नमः तेज तेज नमः बृंद बृंद नमः बीज बीजे नमः।

त्रिभंगी तरकाले अनंगी अकामे एक अछड़ी छंद अज अलै अभ अभ अपू अजू अनास कास गंज पंज लख भख।

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणाशे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निर्कामंग विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणाशे सौतर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणाशी सतरंग प्रणाशी करिमल को निंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करिमल रिहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं।

तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलैंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरे आर अवचार हिसार की धार पछैया तोरत दे समलेंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हर सो बात नहीं चाक चार लवैया साहिब श्री साहब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव बनेद निशाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मै थल मै पल ही पल मै साव थाव थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जात धुन पापन कहे बहु पुंज खपेंगे साध समूह पर सन फिर जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरात अव जोन त्रिलोक राज करेंगे कोट स्नानक जाद गदान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म हेसर विसन सची पाता अंत फसे जाम पास परेंगे

साच कहू सुन लिहो सब जन प्रेम कियो तनहि प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर वाची दिशा में काहू पछाह को शीस नवायो। कु बतान को पूजत है।

करो प्रतपारह मरे दुष्ट सब तुम कावह आपाथदा मोहे बचावह सुखी बस मोर परवारा सेवक सेख सब करतार मोर अच्छा निज कर दया करिय सब अरन को।

काल पाए शिव जुआ बतारा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा।

आद जुगाद स्वरूप स्वयं भवा रक्षा मेरी तुम करो सिख ओ बारा सिख संगरो दुष्ट जेते उठवा तो तपाता सकल मलेच करो रण घाता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो वह मरे पुरख जावन पग परे त्योहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय ताके काल निकट न रक्षा होय ताय सब काला दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तन कमे हर हो रिद सिद्ध

जैसे दर्पण माहे बदन परवानी बस कटा कट लीप न छिपै बंधन मुक्ता जात न दिसै।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI रेडियो ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा खेला करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब।

0: के मुंदड़े लगता क्या के हार जितन पाइए नानका सेतन होवे चार ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सा करम मिले ता पाइए और हिकमत हुकम खुआर पौड़ी नजर करे जी अपनी ता नदरी सतगुर पाया
1: ए जी बोते जन्म भ्रम्या ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुरु जीवदाता कोने स सुने लोक सबाया सतगुरु मिले सच पाया जिन विचो आप गवाया जिन सचो सच बिठाया जिन सचो असम

गावन गोपियाँ गावन कान गावन सीता राजे राम निर्भव निरंकार सचनाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवक करम चढ़ाओ पिनी रहन जिन्ना मन चाओ सिखे सिखे गुर विचार नदरी करम लगाए पार ओलू चरखा चक चक थल।

0: इत संजम दुख जाए पौड़ी।
1: सेव कीती संतोखी जन सचो सच त्याया, उन्नी मंदे पैर ना रखे उन कर सुकृत कमाया, उन दुनिया तोड़े बंदर।

कृष्ण सर्व देवा देव देवा को आत्मा आत्मा बास देवस्य जे को जाने भेव नानक ताक दास है सोई निरंजन देव।

भगत रविदास जी महाराज उस दौर विच बनारस विच पैदा होए ने, जद के भगती भाव दे संगीत नाल भारत दा कौणा कौणा सरशार होया होया सी। हर पासे भगती लहर, हर पासे भगत भावना विच डुबे हुए महापुरुष साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा वाक है, वैसे ता हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे, हर युग विच हर समय विच भगत होंदे रहने संत होंदे रहने, लेकिन भारत दा मध्य काल भगती काल मनिया गया, जिस विच चौं दिशां विच भगत ही भगत पैदा होए। उसी भगती काल विच सूफी फकीरां ने भी अपने अमर संगीत दे राहीं इस देश नूं अध्यात्मक तौर ते सरसब्ज कीता और मानसिक तौर ते उच्चा कीता, जीवन दी जाच दसी। रविदास जी महाराज उन्हां ही सिरमौर भगतां विचों एक महान भगत ने, पेशे दे चमार पर चमड़े तो उच्चे जीण वाले, पेशे तो मोची चमड़े दा कम करन वाले, पर शरीर दे चमड़े तो उच्चे होके उन्होंने सारी जिंदगी बतीत की थी। शरीर दे तल दे उते जो जी रहा है, चमड़ी दे तल दे उते जो जी रहा है, इंद्रियां दे तल दे उते जो जी रहा है, वास्तविक चमार ते वही है, क्योंकि वो वेखदा है चमड़े नूं, चमड़े नूं ही सवारना जिंदगी दा मनोरथ है, चमड़े खलड़ी दा ही रस मारना जीवन दा लक्ष्य है। ऐसे पुरुषां नूं चमार आख्या जा सकदा है। चमड़े दा कम करदिआं होइआं सुरत चमड़े तो उच्ची रखनी, ए कोई भगत रविदास जी महाराज तो सिखे। उन्हां दा काल ऐसा सी कि चारों पासे रविदास ने अपनी भक्ति संगीत नाल प्रभावित कीता। हैरानगी दी गल है कि अनपढ़ जद विद्यक मंदरां दे दरवाजे भी आप लई बंद ने, धार्मिक मंदरां दे द्वार ते बंद ही सन, लेकिन ऐसी अगम्मी विद्या आप दे अंदरों फुटी, ऐसा अगम्मी संगीत आप दी चेतना दे चों प्रफुल्लत होया। दरअसल ये हकीकत है कि परमात्मा जद भी किसी दे अंदरों प्रगट होंदा है, बस वो गीत राही संगीत राही। संगीत और गीत परमात्मा दे बहुत निकट है, बहुत निकट है। संगीत एक कला है, गीत एक कला है, ते परमात्मा स्वयं भी एक कलाकार है, ऐसा महान कलाकार कि उसकी कला चारों पासे सानू देखण नूं मिलदी है। एक निक्का जिहा बीज धरती विच बो के जदों अंकुरित होंदा है, कोमल रूप उसका धरती तो बाहर निकलता है, सहजे सहजे विकसित होंदा है, शाखां पत्ते फिर उस दे चों जद फुल

श्री नामदेव जी महाराज के अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस ओही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवंदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवंदा है, कोई बौद्धक तल ते जीवंदा है, कोई दिल दे तल ते जीवंदा है। जीवन दे ए दो ढंग ने। जो बौद्धक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होवेगी, जो हिरदे दे तल ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होवेगा, पर जो ना बौद्धक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है, वो मनुष्य ही नहीं है, वो पशु है। पशु इन्हां दोहां थल्लां तो थल्ले ही जीवंदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है? दरअसल विचार नाल वस्तु नू समझना है, हस्ती नू समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तो जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तो समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लेके आंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव दी आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद देच है। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़दा है, पिता नाल संबंध जोड़दा है, भैणा नाल संबंध जोड़दा है, भरावां नाल संबंध जोड़दा है। अजे ते विचार दी दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई, अजे ते भाव दी दुनिया। कहिंदे ने परमात्मा नूं समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समा लंघ जांदा है, और फिर भी पूरा समझना उस नूं कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझे है उन्हों हुण अपनी जिंदगी विच प्रयोग विच लिया, तो हुण जज्बा पैदा कर, भाव पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर, ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होवेगी। थोड़ी बहुत जो विचार दे नहीं तेनु झलक मिली है तो हुण जुड़न दी कोशिश कर, पर विचारां दी दुनिया जो बहुत अगे लंघ जाए, महान दार्शनिक हो जाए, महान फिलोसफर हो जाए, तो फिर उस लई जज्बियां नु पैदा करना बहुत कठिन हो जाता है। उर्दू दे अजीम शायर इकबाल दा ऐसा कहना है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ए बंदे अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा, जज्बिया दी दुनिया च पहुंच, वलवलिया दी दुनिया च पहुंच, भावना दी दुनिया च पहुंच। जे तू कोई रस लेना है, स्वाद लेना है, आनंद लेना है, हकीकत है अकल ते रस्ते दा दीव है, अकल ते रस्ते दा चानना है। ते हुन दीवे दी ही कोई परिक्रमा करदा रह जाए ते मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जांदा है, कई दफा अंधी श्रद्धा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जांदा है, पर कई दफा विचारां दी परिक्रमा करन वाला विचारां दे च ही फसा रह जांदा है, और ईश्वर तक पहुंचना उस लई औखा हो जांदा है। विचारक अपने विचारां दे च ही कई दफा उलझ के जो है रह जांदा है। हजारों साल फिलोसफी की तना तनी रही, खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिरे कितना भी खपिए, कितना भी विचारिए, ता भी विचारदियां विचारदियां पता चलदा है कि जिथों असी शुरू होई सी उत्थे ही खड़े, एक कदम भी अग्गे नहीं वधे। विचार विचार के जद ऐसा पता चले कि ओ साडे विचारां च नहीं आउंदा, ओ साडी सोच मंडल दे च नहीं आउंदा, ओ साडे बौद्धक पकड़ दे च नहीं आउंदा, बस उसे क्षण चाहिदा है कि मनुख जज्बियां नू जन्म देवे, श्रद्धा नू जन्म देवे, विश्वास नू जन्म देवे, भावना नू जन्म देवे। तो भगत नामदेव जी महाराज भाव प्रधान पुरुष ने, और आप दे अंदर जदों थोड़ा जिहा भी भाव कमजोर होंदा है, थोड़ा जिहा भी प्रेम पिछे हटदा है, तां आप तड़प के कहंदे ने मोहे लागती।

दम शाहू महाराज विच आए अनेक भगत जिन्हां विचों श्री जयदेव जी महाराज दा अपना एक खास स्थान है। अनंत भगतां दी बाणी अनंत भाषावां विच गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच दर्ज है, क्योंकि भगत देश दे वख-वख प्रांतां नाल संबंध रखदे सन।